आप सत्संग उपासना एक विधि से कर रहे हो, सत्संग दूसरी विधि के सुनने जाओगे तो आप दिग्भ्रमित हो जाओगे। हा? आपके गुरुदेव भगवान ने आपको नाम जाप की सुविधा दे दिया कि बेटा चलते फिरते उठते बैठते आप वो खुटखुटी आजकल बनाते ना नंबर निकलने वाला, हा? कह दिया उसमें जाप कर लो। अब हमारे जैसे के पास पहुंचोगे तो हम तो कहेंगे ये मालस जब क्या रखा है इसमें, ये खुटखुटी कहीं जपने का होता है। अब आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, अरे उन्होंने तो कहा था इससे कर लो, गिफ्ट में दे दिया था, और दूसरे संत ने कह दिया इससे मत जपो। छोटी सी बातों से आपके मन में खटपट जगा और श्रद्धा बिगड़ गया। इसीलिए सावधान रहो, जिज्ञासा रखो तो अपने परंपरा के अपने गुरुदेव से मिलता जुलता संतों से ही रखो। शिक्षा दीक्षा जो भी लोग गुरुदेव जिस संतों से प्रतिपादन करें, गुरुदेव जिस ग्रंथों को अध्ययन करने को कहें, वही आपके लिए सतशास्त्र है, तभी आपका साधना फलीभूत होगा। मैंने पहले कहा यहां आपको शिक्षा के लिए मुझे द्वैत भाषा बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने ये भगवत प्राप्ति का 9 उपाय बताया। और मुझे पता है ये 9 उपाय आपके द्वारा सहज पालन अभी होने वाला नहीं है, मैं शास्त्र की और गुरु आज्ञा की परंपरा निभा रहा हूं यहां पर। और चिंता मत करो, मैं आपको ऐसा चीज देने जा रहा हूं जिसको प्राप्त करते ही आप एम और नियम के स्वतः पालन करोगे, आपको करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि भगवत मार्ग में जाने के लिए पहले यम नियम पालन करना पड़ता है। हाँ, अब यम नियम पालन करने में सबसे पहले तो ये झूठ ही हमारे सामने बहुत बड़ा बबंडर बन के आ जाता है। हम लोगों को झूठ बोलने की इतनी आदत हो चुका है महाराज कि मुंह से कब झूठ निकला पता ही नहीं चलता। तो हम सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आदि इन नियम नियमों को कहां से पालन करेंगे? हाँ, संभव नहीं है। एक एक करके आपको पालन करने को कहूं तो कोई भी नहीं करेगा। ये करने के लिए आंतरिक शक्ति चाहिए। जब तक भीतर से आपको दृढ़ शक्ति प्राप्त नहीं होगा तब तक आपका विवेक बुद्धि तक नहीं पहुंचेगा, और बुद्धि जब तक सक्रिय नहीं होगा, मन की लगाम जो है लगाम बुद्धि नहीं कसेगा, और इंद्रिय तब तक सही डायरेक्शन में नहीं चलेगा। बाहर से बताकर भीतर प्रवेश कराना आज मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर में तमोगुण की मात्रा इतनी ज्यादा भर गया है कि हम सच सत्य असत्य का विवेक कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें कृपा मार्ग की आवश्यकता है। तो ये सब चीज जो 9 उपाय हनुमान जी ने कहा, बस यही 9 उपाय से भगवत प्राप्ति हो ही जाएगा, परंतु ये सहज हमारे अंदर पालन नहीं होगा। इसलिए आपको कृपा मार्ग चाहिए जो मैं आपको देने जा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में शुरू करूंगा। वैसे आप लेट आए, मैं तो सुबह से प्रतीक्षा में बैठा था भाई, और लेट मत कहो। और इतनी बड़ी चीज देने जा रहा हूं तो फिर 8 तो बज नहीं चाहिए। और संध्या काल में ही साधना की जाती है, दोपहर में नहीं। कुंडलिनी जागरण के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त चाहिए या थोड़ा शीतलता चाहिए। अब दूसरी चरण में आइए। ईश्वर को जानने से, जीवात्मा को जानने से, माया को जानने से, और इस प्रकार से ईश्वर के शरणागत होने से क्या फायदा है, इस फल को जानना है। क्योंकि मनुष्य जन्म ही लोभ से हुआ है, हम जन्मजात लोभी हैं। और कुछ हो ना हो, देखो बच्चा जन्म लेते ही मुंह आ करके भक्षण के लिए चला जाता है, तो लोभ हमारे अंदर जन्म से आया है। तो बिना लोभ के हम आगे नहीं बढ़ते, इसीलिए शास्त्रों ने यहां फल का विधान किया है, फल बताने को कहा है। तो श्री हनुमान जी अगस्त ऋषि को फल बता रहे हैं कि भगवत स्वरूप को जानने से, जीव स्वरूप को जानने से, माया को स्वरूप को जानने से, और भगवत शरणागत होकर हनुमान जी के ये 9 उपाय बताए गए, 9 उपायों को करने से क्या फल मिलेगा आपको, तो सुनिए। प्रारब्धम परिभुञ्जाथ विद्वा सूर्यादि मंडलम

0: चेतकम तथा।
1: श्री हनुमान जी ने कहा, हे अगस्त्य जी, इस प्रकार से भगवान के शरणागत मात्र हो जाने से वह जीव अपनी समस्त प्रारब्धों को तत्काल नष्ट कर लेता है। जिस प्रकार से प्रकाश अंधकार को मिटाता है, आपके घर के अंदर कोठरी में अंधकार है तो उस अंधकार को भगाने के लिए आप हाथ में तलवार लेकर जाओ और उस अंधकार के कहो कि अंधकार भाग जाने तो मैं तुम्हें इस तलवार से काटूं, तो क्या भागेगा? हाँ, मशीन गन लेके जाओ और अंधकार से बोलो भागो तो क्या भागेगा? अन्य उपाय लाख कर लो, वो अंधकार नहीं भागेगा। परंतु आप कुछ भी मत करो, वहां प्रकाश जला दो तो अंधकार स्वतः भाग जाएगा। इसी प्रकार से इस भगवत मार्ग में आपको कोई साधना, जप, ध्यान, योग, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, अनुष्ठान भगवत प्राप्ति के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोक कल्याण के लिए हम लोग करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए तो केवल शरणागत होना है, केवल शरणागत। भगवत शरणागत होते ही आपका समस्त प्रारब्ध, जो गुरुदेव कान में ब्रह्म बीज, तारक मंत्र, कस्तरती प्रश्न उठा तो सतरती वही तरता है, वही तरता है, सतारयती वही तारता है। कौन? जिसने तारक मंत्र राज को प्राप्त किया है। तारकम ब्रह्म संगकम, वो कौन सा है? श्री राम राम, ये श्री राम नाम ही तारक ब्रह्म है। और ये गुरुमुख से प्राप्त करते ही मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, आपकी समस्त प्रारब्ध इसी जन्म में तत्काल नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कलयुग की बहुत बड़ी महिमा है, कलयुग की बहुत बड़ी महिमा। अनेक अवगुण में कलयुग की सबसे बड़ी गुण क्या है कि थोड़े ही भजन राम नाम प्राप्त करते ही वो इस भवसागर से तर जाता है। तो प्रारब्धम परिबुद्ध्यार्थ, तत्काल उसकी समस्त प्रारब्ध नष्ट हो जाता है और उसकी वृत्ति मूलाधार से ऊपर उठने लगती है। मूलाधार से तीव्र गति से वृत्ति जब ऊपर उठकर हृदय चक्र को, विशुद्ध चक्र को भेदन करना बड़ा कठिन है। सबसे कठिन चक्र है विशुद्ध चक्र। अति तीव्र वेग से, अति वेगेन ताम तृत्वा, अति तीव्र वेग से सूर्यादि मंडल को पार करते हुए वह जीवात्मा, वह चेतन सहस्रार की ओर ऊपर उड़ता है दीक्षा काल में। अभी जब तक आप जीवित हो, यहां दो प्रकार से समझना आप, जैसे ही आपको नाम शक्तिपात होते ही आपके मूलाधार में सुसुप्त होकर बैठी हुई वह जो पराशक्ति, जिसे हठयोगी जन सदुकड़ी भाषा में कुंडलिनी कहते हैं, वेदांती उसे चित शक्ति कहता है, भक्त उन्हें भगवती, देवी, पराम्बा, भक्ति इत्यादि नामों से पुकारते हैं। वह शक्ति ऊर्ध्वमुख होकर ऊपर की ओर प्रवाहित होते ही आपका मनोमय वृत्ति ऊपर उठेगा, आपका एकासी प्रवेश मनमय कोष में होगा। अभी हम अन्नमय कोष में हैं, प्राणमय अन्नमय में हम जी रहे हैं, तत्काल मनमय में प्रवेश होगा। और मनमय कोष में प्रवेश होते ही फिर उससे आगे आपकी गति बढ़ जाएगी, आप विज्ञानमय कोष में प्रवेश करते हैं, तब चक्र भेदन होता है। इस शरीर को अयोध्या माना है, अष्ट चक्र नव द्वारेषु, आठ चक्र नव द्वार वाला ये शरीर ही अवधपुरी है, जो सहस्रार में श्री ठाकुर जी विराजते हैं। इसकी व्याख्या में हम नहीं जाएंगे, केवल सूची पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से समस्त प्रारब्ध को नाश करती है। जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत न हो तब तक किसी भी जीव का पूर्व संचित कर्म नाश नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं होता है। अब एक कुंडलिनी शक्ति जगाने का कहकर जगाते हैं, एक भगवान की भक्ति कहकर जगाते हैं। यहाँ शब्द की भेद है। आप अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में डूब जाओगे तो प्राग शक्ति स्वतः जागृत होती है गुरु कृपा से। उसे कुंडलिनी सुंडलिनी कहने का कोई जरूरत नहीं है। ये तो आजकल कहने की प्रथा निकला, इसलिए आपको मैं भी कह दे रहा हूं। हाँ? तो इस शक्ति को कैसे जगेगा? तो सर्वप्रथम नाम शक्ति अंतर प्रविष्ट हो जाती है। नाम शक्ति अंत प्रविष्ट होकर वो क्या काम करती है? मूलाधार में सुप्त होकर बैठी हुई उस ब्रह्म अग्नि को प्रबुद्ध करा देती है। जैसे ही वो ब्रह्म अग्नि प्रबुद्ध हो जाती है तो बड़बड़ा के अंतर्मुखी होती है। इसके लिए हमारे महायोग के गुरुजी थे, ये हमारे गुरु भाई जी यहां विराजमान हैं, श्री जानकी दास जी अभी सूरत से पधारे हैं, वो जानते हैं। गुरुजी कहा करते थे,

ये नाम साधना के विधि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बाल कांड में शुरू में कहा, जुगती बेदी पनी पोई है। दूसरी जगह कहते हैं सज्जन जो है मर्मी जो है कुदारी लेकर खोदते हैं। हाँ, ये साधना विधि गोस्वामी जी मानस में दिए हैं ये साधना की महिमा। अब ये जुगती बेदी पनी पोई है क्या है? हमारे शरीर के 72,000 नाड़ी मल से बंद हुआ है और सुषुम्ना प्रारब्ध जन्य कर्मों से जन्मों से बंद है और प्राण शक्ति हमारी बाहर की ओर प्रवाहित होती ही रहती है। थोड़ा योग के भाषा में बात करूंगा आपसे। ये जो हमारी शरीर है ऊर्ध मूल अधशाखा है तो ये मूल है। फॉरहेड क्या है? मूल है। इसलिए यहां छोटे छोटे रूट है, ये बाल जो है ना, तो कस्मिक एनर्जी ये आकर्षण करता है अर्थात ब्रह्मांडीय जीवनीय ऊर्जा धरती के गुरुत्वाकर्षण अपने ओर खींचती रहती है। उस खींचने क्रम में सबसे पहले वो जीवनीय ऊर्जा जीवित प्राणी में उसके मस्तिष्क से समाहित होता है और उसके शरीर को होते हुए वो ऊर्जा धरती के तरफ चला जाता है। ये प्रसव प्रक्रिया है, निरंतर होता ही रहता है। इसे कहते हैं जन्म मरण की चक्कर। अब हमारे योगियों ने उस ऊर्जा को ऊर्ध्व रिटर्न ऊपर चढ़ाने की विधि जान ली तो उसकी उपाय इन्होंने समझा जाना और उसकी उपाय हठयोग के माध्यम से, लय योग के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से, मंत्र योग के माध्यम से, हटो मंत्रो लयो राजयोग अंतर भूमिका कर्मात् एक एव चतुर्धायाम महायोगो विधीयते, योग सिखो उपनिषद में कहा है। हठ योग मंत्र योग लय योग राजयोग ये चारों योग जहां ऐक्य अवस्था में होकर आपका सुषुम्ना भेदन करता है तो वो महायोग बनता है। महायोग भगवान नाम भक्ति के द्वारा होता है। इस साधना का नाम गुरु भक्ति योग भी है। इस साधना का नाम ब्रह्म योग है। गीता में इसे गुह्य योग कहा है, इसे आत्मा योग भी कहा है, इसे दहर विद्या कहा है वेदों ने और इसे भगवान रामानंदाचार्य ने सुरति शब्द योग कहा है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होकर बहकर चला जाता है। जब मूलाधार की उस शक्ति को हम ऊर्ध्वमुख करते हैं तो ऊपर की ओर उठने लगती है। ऊपर उड़ते हुए हमारे इस मानव शरीर में 72,000 स्थूल नाड़ी हैं। सूक्ष्म नाड़ी जो सुषुम्ना है वो सूक्ष्म शरीर का है, वो प्राणमय देह का है। तो वो ऊर्ध्व शक्ति जागृत हो जाती है और नाम चेतना के साथ राम नाम जैसे ही आप मूलाधार से उच्चारण करते हैं तो नाम के बल से वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उड़ती हुई हमारे नाड़ियों के अंदर सबसे पहले आगे प्रविष्ट होता है। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी छठो अध्याय में कहा कि गुरु कृपा से जब वो कुंडलिनी उद्बोधित हो जाती है उससे पहले पंच प्राण एक साथ मिलते हैं। जब साधक गुरु कृपा के माध्यम से मूल बंधन लगाकर बैठता है, मूल बांधिया स्थूल गर्जिया गगन धुनि ध्यान लगा त्रिगुण रहित शील संतोष में राम रक्षा लिए प्राणी ओंकार जागा। राम रक्षा लिए यानी राम जी की कृपा से, राम नाम की प्रताप से उसके अंदर ओंकार प्रकट हो जाता है। ओम से ऊर्जा ऊर्ध्व गमन करने लगती है। उस समय प्राण अपान उदान ब्यान समान ये सब एक साथ मिल जाते हैं। प्राण अपान उदान ब्यान समान मिलते ही सबसे पहले वह कुंडलिनी महारानी के रास्ता को बनाते हैं क्योंकि महारानी चलने से पूर्व उनके पंच फण वाले ये जो पंच प्राण हैं वो चलते हैं। तो 72,000 नाड़ियों में सबसे पहले ये पांचों प्राण प्रवेश करके कोने कोने में घुसकर जन्म जन्मांतर की और इस जन्म भी की कफ पित्त वात आदि दोष से ग्रसित उन तत्वों को सोख लेती है, खींच देती है। सर्वप्रथम साधक को निरोग बना देती है।
आपको जो विभिन्न प्रकार के रोग कफ पित्त वात कुपित होने से आपके शरीर में उत्पन्न हुआ है, यह कुंडलिनी जागने से पूर्व ही पंच प्राण के द्वारा हरण की जाती है। 80% रोग हरण हो जाते हैं, उसके बाद रास्ता खुला हो जाता है। तो कुंडलिनी जोरदार फूंक फूं मारकर ऊपर की ओर उड़ती है। लंबे समय से वो कुंडल मार के सोई हुई है ना, तो अंगड़ाई लेती हुई ऐसे उड़ती है। जैसे ही वो अंगड़ाई लेती है तो मूलाधार में एक गजब का हलचल शुरू हो जाता है। वहां चार पंखुड़ी कमल दल की परिकल्पना योगियों ने किया है, वहां लंग बीज से युक्त क्लिंकार रूप में ब्रह्म बीज विश्व शक्ति आकर्षण करने वाला मां काली अथवा श्री कृष्ण बीज में वह विराजमान है। वो अपने सिर पर लेती हुई हुंकार मारते हुए दिव्य गुणों को आकर्षण करके हुंकार मारती है, और बहुत दिनों की भूखी है वो, अधमुख होके बैठी थी, बहुत दिनों से भूखी है। तो मुंह आ करके ऊपर की ओर जब फैलती है, उस समय उस मुंह जैसे खुलती है तो ये जो वैष्णव योगी हैं, नाम योगी जो हैं, उसके मुंह में राम नाम फट से भर देते हैं। तो उस नाम में फिर क्या क्या है, दैयमान गुण, शीतल गुण और प्रकाश, ये तीनों नाम में है। हाँ, हेतु कृषाणु भानु हेम कर को, वो दाहकता गुण में, शीतल गुण में और प्रकाश गुण में राम नाम की तुलना में कुछ भी नहीं है। तो दैयमान गुण लेकर वो जब आगे बढ़ती है तो सबसे पहले उसे कहते हैं जुगती। वहां दो प्रक्रिया हैं, एक आपको कुछ क्रिया बताई दी जाती है, उसके द्वारा सुषुम्ना को भेदन किया जाता है, ये हठयोग की प्रक्रिया है। और दूसरी, वहां क्रिया कुछ बताई नहीं जाती, कृपा से ही वो भेदन हो जाता है, उसको कहते हैं जुक्ति उपाय को। जैसे जंग लगा हुआ भी क्यों ना हो, आपके पास उस ताला खोलने के लिए चाबी अगर है तो फट से खुल जाएगा, उसके नाम है जुक्ति। तो वो जुक्ति घुमाते ही आपकी सुषुम्ना की द्वार खुल जाएगी। तो पंच प्राण पहले ही 72,000 नाड़ी को तो शोधन कर चुके होते हैं, अब रहती है सुषुम्ना नाड़ी। तो कुंडलिनी अंगड़े लेकर कहती है, अरे दुष्ट, अभी भी तू मेरे द्वार खोले भी नहीं, यहां बैठा है। मुंह आ करके एक ग्रास में वो सुषुम्ना को घुट जाती है, उसकी द्वार खुल जाता है। खुलते ही प्रथम नाड़ी चित्रा नाड़ी में कुंडलिनी पहुंचती है। उस समय मूलाधार चक्र में डाकिनी शक्ति उद्बोधित हो जाती है। ये तंत्र मार्ग के हिसाब से अगर इसको कहेंगे तो डाकिनी, साकिनी, काकिनी, हाकिनी, लाकिनी, ये षड शक्तियां चक्रों में विराजमान होती है। सारे पृथ्वी तत्वों को बीज लेकर बैठी हुई होती है वो डाकिनी शक्ति, बड़ा शक्तिशाली होती है। जैसे लंका भेदन करने के लिए हनुमान जी गए तो वहां पर बैठी थी ना लंकिनी, ऐसे ही सदगुणों को रोक देती है, दुर्गुणों को भीतर भेज देती है, उसको अपनी वश में कर लेती है कुंडलिनी शक्ति। और उसके साथ भीतर बढ़ते ही आपने सुना होगा इमलोक में इमराज के यहाँ चित्रगुप्त जी विराजते हैं, जो सबको बही खाता लेकर बैठते हैं, सबका हिसाब किताब उनके पास होता है। तो योगी जन आपके सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर के मेरुदंड के भीतर सूक्ष्म शरीर में सुषुम्ना है, उस सुषुम्ना के भीतर चित्रा नाड़ी है, वो चित्रा नाड़ी में ही आपका सारा कर्म संचय होकर बैठा हुआ होता है। तो वो राम नाम के द्वारा सुसंस्कारित कुंडलिनी सर्वप्रथम आपके सुषुम्ना को भेदन करके चित्रा नाड़ी में पहुंचकर आपकी जन्म जन्मांतर के जितने भी संचित कर्म हैं उसको खाना शुरू कर देती है। श्री ज्ञानदेव जी कहते हैं उससे पूर्व कुंडलिनी एक चक्कर लगाती है शरीर में 72,000 नाड़ी में, एक ग्रास में रक्त की घूंट पी जाती है, एक घूंट में ही एक ग्रास में मांस और हड्डी के अस्थि के भीतर के चर्बियों को खा जाती है, दूसरी ग्रास में नाखून तक जाके बाहर बालों के और चमड़ी को भी नोच लेती है, सारी दोष को चपा जाती है,
और हृदय के पास पहुंचकर और वहां पर चंचल मान होकर बैठे हुए प्राण वायु को देखकर कहते, अरे तू जिंदा यहाँ पर बैठा है, तो उसको एक ग्रास में बस में कर लेती है। अब पांचों प्राण भी उनके बस में हो जाते हैं। हाँ, अब वहां प्राण क्या हो जाता है, निरुद्ध हो जाता है। उस अवस्था में योगी अमनस्क हो जाता है, उसे अमनस्क योग कहा जाता है। अमनस्क योग, मन नाम की वस्तु खत्म हो जाती है वहां पर, क्योंकि मन की और प्राण की बड़ी घनिष्ठ संबंध है, और ये प्राण चेतन शक्ति है, जड़ शक्ति नहीं है, और मन जड़ है। ये जो वायु है जड़ है, पर इस वायु प्राण के बल से चलता है। ऐसे ही मन जड़ है, मन प्राण के द्वारा संचालित होता है। तो प्राण निरुद्ध होते ही मन नाम की वस्तु समाप्त हो जाता है, वहां अमनस्क योग शुरू होती है। समझे कि नहीं? तब कुंडलिनी डकार लेती हुई मुंह खोलती है तो उल्टी करती है। उस समय कुटीचक योगी अगर होंगे तो, हाँ, उस समय कुटीचक योगी अगर होंगे तो उनकी शरीर सूखे लकड़ जैसा हो जाता है। अब लगे अब मर जाएगा, ये उठने का भी सामर्थ्य उसमें न हो, ऐसा दिखता है देखने में, परंतु तेज संपन्न होता है, भयंकर तेजस भी। और जैसे ही कुंडलिनी उल्टी कर देती है तो उसका पुनर शरीर निर्माण होता है, वह दिव्य देह निर्माण होता है, जो इच्छा मृत्यु के निर्णय में पहुंचता है वो उस योगी के संकल्प में मात्र नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता है। ये देह सिद्धि के तरफ जब जाते हैं तो, और देह सिद्धि में न जाकर हम भगवत सिद्धि में अगर जाते हैं तो चित्रा नाड़ी के अंदर प्रवेश करके हमारी जन्म जन्मांतर की अनंत जन्म हमारी हो चुकी है। ऐसा कोई जन्म नहीं है जो हमने न लिया हो, एक बार नहीं अनेक बार। हाँ, ऐसा कोई कर्म हमने नहीं किया हो, एक बार नहीं अनेक बार। तो वो सारा संचित कर्म भीतर इन पहाड़ों के ढेर से भी अनंत ढेर लगा हुआ है, परंतु नाम महाराज प्रवेश करते ही एक एक मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। राम नाम में ऐसा ताकत है कि आपकी पाप राशि चाहे जितना भी हो वो तत्काल भस्म कर देता है। इस प्रकार से जब गुरु कृपा शक्ति पात होता है तो राम नाम उस युक्ति से शरीर में पोया जाता है, उना जाता है। युक्ति के द्वारा राम नाम को पोकर जैसे एक एक फूल की पंखुड़ी से माला बना है, हार बना, उसी प्रकार से ये युक्ति के द्वारा राम नाम को 72,000 नाड़ी में हम लोग पो देते हैं, और इसके बाद आप धारण करते हैं तो रोम रोम से आपका ररंकार चलेगा। तो उसका फल क्या है, जैसे ही आपके अंदर नाम धारणा होगा तो आपका हृदय, आपका चित्त विमल विमल उर आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। जो काल परसों के सत्संग में मैंने आपको कहा था कि भक्ति करने के लिए हमारी चित्त निर्मल चाहिए, योग करने के लिए हमारा चित्त स्थिर चाहिए, ज्ञान के लिए हमें समदम विरति विवेक युक्त होना चाहिए तो ज्ञान को धारण कर पाएंगे। हमारे पास समदम विरति विवेक भी नहीं है। समदम का मतलब होता है इंद्रियों को, मन को नियंत्रण करना, विरति का मतलब होता है त्याग, और विवेक का मतलब होता है सत असत वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, उसे ऋत प्रज्ञा कहते हैं। ये हमारे पास नहीं है, तो स्थिर चित्त तो है ही नहीं, निर्बलमी नहीं है। तो अब यहां भगवान नाम क्या करता है कि सर्वप्रथम हमें निर्मल कर देता है, चित्त को निर्मल बना देता है। जैसे ही आप इसको पहरेंगे तो सज्जन हो जाते हैं, आपका दुर्जनता नष्ट हो जाता है, और शोभा की कोई सीमा नहीं। विमल उर शोभा अति अनुराग। अब यहां से नाम के कृपा से आपके अंदर यन लब्धा पुमान, आपके अंदर वह पराभक्ति प्रकट हो जाती है जिसे
अनुरागात्मिका भक्ति महर्षि शांडिल्य जी ने कहा, हाँ? अनुरागात्मिका भक्ति प्रकट होती है। श्री नारद जी ने इसे सातो अस्मिन परम प्रेम रूपा, उस भक्ति को परम प्रेम रूप कहा। और सात द्विविधा वो दो प्रकार की, गौणश्च परा, गौण भक्ति के साथ वो पराभक्ति साधक में चरितार्थ होना लगता है। और गौण भक्ति में क्या होने लग जाता है, तो आपका मन आश्रम में लगेगा, आपका मन आरती में लगेगा, आपकी मन स्तुति में लगेगा, आपकी मन रामायण पढ़ने में लगेगा, आपकी मन राम नाम गाने में लगेगा, आपकी मन कीर्तन में झूम जाएगा, आपकी मन तिलक करने में अपने को सबसे बड़े भाग्यशाली समझेंगे। अभी तो क्या है, तिलक करेंगे तो शर्म आएगा, लाज लगेगा, कौन क्या कहेगा हमें, हाँ? धोती पहनने में आपको शर्म आएगी, पर जब आपके अंदर गौण भक्ति जागृत होगी, शान से धोती बांधकर, चोटी कसके, तिलक लगाकर, अपने आप को आप मैं राम का हूं ऐसा गौरव करने में आप अपने को पीछे नहीं हटेंगे, इसको कहते हैं गौण भक्ति। और इसके साथ साथ ही मानसिक रूप से आपके अंदर अंतः प्रेम उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं अनुराग। ये संसार को जो हम चाह रहे हैं ये क्या है, यह है राग। और ईश्वर को जब इसी संसार के माध्यम से जब चाहते हैं तो क्या कहलाता है, अनुराग। अन्य कोई भी योग इस कलिकाल में काम नहीं आता है, इसीलिए गोस्वामी जी ने ठोकुआ करके कहा,

तो सज्जनों, इस कलयुग में दूसरा कोई साधन आपको हाथ नहीं आएगा। श्री काकभूषुंडी जी 27 कल्प के अनुभव के बावजूद गरुड़ जी को कहते हैं, निज अनुभव कहूं खगेशा, हे खगराज सुनिए ध्यान देकर, मैं अपने अनुभव कहता हूं, शास्त्र को तो हमने कहा आपको, बिनु हरि भजन न जाहिं कलेशा। ये जो कष्ट है, ये जो दिन दुखिता हमारी रात दिन जिस पर हम फंसे हुए हैं, बिना भगवान के भजन किसी के ऊपर हाथ फिराने से नहीं जाने वाला, ये भ्रम चक्र में मत पड़ो आप। हाँ, मानो सबको, पर साथ साथ में हरि भजन चाहिए। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिए, बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी हई यह सिद्धांत अपिल। जल को मथोगे तो घी निकल आएगा, असंभव संभव हो जाएगा। हाँ, बालू रेत को पेलोगे तो तेल निकल आ जाएगा। इतना ही नहीं, यहां तक भी बोले हैं कि आकाश में वृक्ष फल फूल जाएगा। बिना धरती को कहीं वृक्ष होता है क्या? मान लो आकाश में हो भी जाए, कई उदाहरण दिए हैं, आप सब विद्वान जानते हैं, परंतु बिना हरि भजन नहीं हो सकता। और ये भजन की प्रवृत्ति बिना कृपा को नहीं मिलेगा। राम

आप वैसे नाम जब कहो मैं कहूंगा नहीं जपोगे। हम लोगों ने खूब अभ्यास किया, हमने अयोध्या में बूढ़े रामायणी महाराज जी से सुना छावनी में, उन्होंने कहा कि 24 घंटा अगर लगातार नाम जप चले, एक परिधि रेखा में बैठ जाए, बाहर न जाए, एक अवतार से 24 घंटा नाम जाप अगर कर ले तो 24 घंटे में ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ये सुनकर हम लोगों ने खूब अभ्यास किया, कई और हमारे मित्र साधु भी थे, उस समय हम लोग मधुकरिया बन के नाम जापक बन के बड़ा प्रयास किया करते थे। तो वो 24 घंटा की जाप करने के लिए कईयों बार प्रयास किए महाराज, कई दिन पहले से भूखे रख के व्रत रख कर पेट शोधन किया और न सोने की अभ्यास किया, दुनियादारी करके जब जाप में बैठ गए तो अंतिम में जाके खंडित हो ही जाता। कई बार ऐसा किए, कई बार करने के बाद एक बार तो गजब हुआ, सपने में हमने रामलीला देखा। हाँ, 20 घंटे तक चलता रहा, 20 घंटे के बाद कब नींद आया पता ही नहीं चला, तो सपना देखा, सपने में मस्त रामलीला में पहुंचे हुए थे। तो ये भी तो कृपा ही हुआ ना। और हमारे संत लोग हजार हजार दाना के माला लेकर खिसकाते रहते हैं, टाटी घाट में, सरजू के किनारे में, यमुना के किनारे में, हाँ बद्रीनाथ में माला छकछका रहते हैं, खींचते रहते हैं हजारी माला, हजार पति लखपति करोड़पति कहलाते हैं। और कभी कभाओ कुंडलिनी के एक झटका लग जाए शरीर में तो दूसरे दिन खुश के मारे उठ उठकर भंडारा करते हैं, गुरु भाई आज तो चमत्कार हुआ, बोले मेरा शरीर तो ऊपर हवा में तैरने लगा, जोर से झटका मर गया, रघुनाथ जी लगते हैं कृपा कर रहे हैं। संत लोग ऐसा भावुक हो जाते हैं, अभी देखना आपको कैसे झटका लगता है बिना, हाँ 60-60 वर्ष साधना साधक हमारे संत लोग करते करते करते बुढ़ा गए और एक झटका कुंडली को महसूस होने पर उठकर नाचने लगते हैं, रामरतन पूजा करते हैं। और आप यहाँ आज कल परसों देख लेना, न नाम जाप किया, न नहाया, न धोया, न कुछ, पर जब गुरु कृपा होती है श्री जानकी दास महाराज जी का, श्री शास्त्री जी महाराज का, न मेरी कुछ बहादुरी नहीं है, मैं तो इनकी तपोबल लेके इन्हीं से आपको दूंगा, और ये जानकी दास महाराज बैठे हैं कृपा करने के लिए, और देखना फिर कैसा शुरू होता है, कैसे आप उचकने लगते हो। गोस्वामी जी ने कहा जाने बिनु न होई परतिति, ये जरूरी है, अनुभव प्रत्यक्ष शुरू में आना बहुत जरूरी है, बिनु परतिति होई नहीं प्रीति। जब तक आपको झटका नहीं लगेगा, जब तक आपको महसूस नहीं होगा, आपको फिर विश्वास नहीं जमेगा, प्रीति नहीं होगा। अब प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, क्योंकि विश्वास के बिना प्रीति नहीं, प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। नहीं तो जितना भी कागभूषण जी ने कहा जिमी खगपति जलक के चिकनाई, तो उन्होंने कहा और ये चीज अपने मनमुखी नहीं होता, यहां भी ये कह रहे हैं, गुरु बिनु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख की लय हरि भगति बिनु। ये शास्त्र प्रमाण है देकर कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, गावई वेद पुराण, सभी शास्त्र सभी संत एक स्वर में एक मत में कहते हैं बिना गुरुदेव के ज्ञान नहीं होता है। जो कहते हैं कि सपने में आकर हमें गुरु शिव जी ने दीक्षा दिया या समाधि में इनलाइटमेंट हो गए, ये सब मिथ्या बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गुरु कृपा से प्रतीत हो जाता है और वो नाम कृपा ऐसा बरसने लग जाता है कि आपको कुछ जानना शेष नहीं रहता, भीतर बाहर दोनों आपको जानकारी, आपके हृदय में नाम महाराज विराजते ही हो जाएंगे। हाँ, राम

जी यार, आपके जिह्वा मूल में फड़फड़ा के नाम जाप शुरू हो जाएगा और इस प्रकार से आपका अंतर और वाह्य जो अभी अभी थोड़ी देर पहले हनुमान जी ने जो कहा वो सारी नौ के नौ उपाय आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा। और ये नाम तो बड़ा गजब का है, कभी मौका मिलेगा नाम महिमा गाने का तो गाऊंगा। तो ये नाम जो है सब साधनों के साधन है, सब मंत्रों के मंत्र है। बिना राम नाम के कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, यहां तक कि ओम भी। राम नाम समत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायक, ये प्रणव राम नाम से उत्पन्न हुआ है इसलिए मोक्षदायक है, समझे कि नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इन सब के सार में कहा, एक छत्र एक मुकुटमणि सब बरन नहीं पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। ये रार और म समस्त वेद पुराण शास्त्र सबके अगाड़ी पछाड़ी ऊपर नीचे यही व्याप्त होके रहते हैं, इनके बिना न तो उच्चारण हो सकता है न शोभा हो सकता है। इसीलिए राम नाम द्वारा प्रणव का उत्पत्ति है, राम नाम समुत्पन्नो प्रणव मोक्ष जाएगा। और नाम की इतनी बड़ी महिमा है, आपको भगवान के ध्यान करने की काल्पनिक ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आप देखो 6 लाख जाप पुरस्करण करने के लिए बैठोगे तो आपको लगेगा कि मैंने 6 लाख की जाप के मैंने पुरस्करण किया, यहां कर्तृत्व अभिमान आ जाएगा। हा? आप रामायण पाठ करने बैठो, हनुमान चालीसा, कई भक्त लोग हमें मिलते हैं, गुरु जी हम तो रोज हनुमान चालीसा करते, मैं तो इतनी वर्षों से करते आ रहा हूं। अब वहां पर क्या चीज आ रहा है, कर्तृत्व अभिमान आ रहा है। मैं एक आसन से बैठ के रामायण पूरा पाठ करता हूं, ये कर्तापन की अभिमान हमें कृपा से दूर रखता है। जब साधक में कर्तापन आ जाता है तो वो साधना से कृपा से दूर हो जाता है, और जब आप अपने प्रयास से करोगे तो आपके अंदर कर्तापन की भास आएगा ही आएगा। इसी प्रकार से ध्यान करोगे तो ध्यान करते समय भी क्या होगा, तो काल्पनिक करोगे, आप मन के द्वारा गुरुदेव के बताई शास्त्र के बताई एक छवि सामने प्रकट करोगे और उसमें आप बारंबार चित्त लगाने की प्रयास करोगे और आप कहोगे मैं ध्यान करता हूं, तो किया हुआ ध्यान कर्तापन का अभिमान आ जाता है, तो ध्यान होता नहीं है वहां पर। तो गोस्वामी जी यहां कहते हैं ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नाम और रूप एक दूसरे के अधीन है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। आपके सामने रूप है, ये है तो आपके सामने, हाँ ये सब है तो रूप, पर नाम के बिना इसको नहीं जाना जा सकता। करतल गत होने पर भी नाम के कृपा के बिना आप नहीं जान सकते, और नाम है तो रूप को ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आगे कहते

देखो, आपको भगवान के सगुण स्वरूप को समझ नहीं है, निर्गुण के तो हम कल्पना ही कर नहीं सकते हैं। ऐसे अवस्था में ये जो नाम साधना है, ये चतुर्दुभाषी है, ये आपको भगवान के सगुण साकार निर्गुण निराकार दोनों स्वरूप को बोध करा देते हैं, आपको भीतर और बाहर दोनों तरफ से भी बोध करा देते हैं। और नाम लेते ही अगर हम यूं कहें कि जानकी दास महाराज कहां पर हैं, तो खड़े हो जाएंगे, ये सामने बैठे हैं जानकी दास जी, भीतर मंदिर में विराजमान है। नाम लेते ही उनके स्वरूप का चिंतन करना नहीं पड़ता है, पर वह नाम कहां से उच्चारण होना चाहिए। आइए, हमारी जो वाणी है चार प्रकार की है, ये जो सुन रहे हैं आप इसे बैखरी वाणी कहते हैं। दूसरा सुन न सके आप स्वयं अनुभव करें, जिह्वा ओठ हिलाकर श्वास के सहारे जो उच्चारण की जाती है उसको मध्यमा कहते हैं, और केवल मन से उच्चारण करते हैं उसे प्रांशु उपांशु कहते हैं, और जहां से शब्द की उत्पत्ति होती है उसे पश्यंती कहते हैं। तो नाभि मंडल से शब्द की उत्पत्ति होती है, परा पश्यंती मध्यमा बैखरी, ये चार प्रकार की वाणी है। तो जब आप कुंडलिनी शक्ति उद्बोधन होने के बाद गुरु कृपा शक्ति से ये कुंडलिनी शक्ति उद्बोधन होती है, उसमें राम नाम की संस्कार दी जाती है, राम नाम की संस्कार प्राप्त करते ही क्या होगा, तो आपकी मूलाधार से ऊपर नाभि मंडल से शब्द की उत्पत्ति होती है, शब्द की व्युत्पत्ति वहां से होता है, तो वहां सीधा राम नाम के उच्चारण होगा। जब आपकी उच्चारण नाभि से होगा तो महाराज एक ही नाम में ठाकुर जी सामने आ जाते हैं। राम स्नेही परंपरा में नाम जाप की विधि बड़ा सुंदर बताया है, पहले 6 महीना बैखरी जाप करो, 6 महीना श्वासाश्वास जाप करो, 6 महीने मानसिक जाप करो, 6 महीने हृदय से जाप करो, और 6 महीने नाभि से जाप करो, ऐसे विधि श्री राम स्नेही परंपरा में बताया गया। पर इतना वहां वाणी में उनकी है, रामदास महाराज की वो तरीका नहीं आता है किसी को। हाँ, और यहां आपको ये सब कुछ नहीं करना है, ये मैं नहीं कराऊंगा, आप घबराओ मत, साधना तो मैं कुछ कराऊंगा ही नहीं आपको, बार बार मैं कह रहा हूं। तो नाभि से जब नाम उच्चारण होगा तो ये सब घटित हो जाएगा। तब नाम जी जपि जागहिं जोगी, बिरति बिरहंसि प्रपंच वियोगी। तुरिया अवस्था में साधक जागते हैं और क्या करते हैं, ब्रह्म सुख।

अधिक पाए। महाराज आपको सिद्धि चाहिए ना, सब सिद्धि आपके करतलगत हो जाएंगे। राम नाम के द्वारा जो सिद्धि आएगी वो आपको अनहित नहीं करेगा कभी। अन्य अंतर मंत्र तंत्र इत्यादि विधियों के द्वारा जो सिद्धि आती है वो आपको सर्वनाश कर देती है। बड़े बड़े सिद्धों को दुर्गति हम लोगों ने देखा सुना है। हाँ, समझे कि

करना है। नाम जप में हठ योग, लय योग, मंत्र योग, यहाँ गोस्वामी जी ने लय योग की चर्चा किया। लय योग में पहुंच के आपको नाम जाप करना है, साधक नाम जप ही लय लाए, ये लय योग की चर्चा हो रही है। तो इस प्रकार से नाम जब आपको नाम सप्रेम में पियूष हृदय तिन्हू किए मन मिन, आपका मन मछली बन जाएगा, नाम रस बन जाएगा और मन उसमें डुबकी लगाए बिना सेकेंड भी नहीं रहेगा। महाराज आपके मन की सभी कामना सकल कामना हीन जे, सब कामना आपकी नष्ट हो जाएगा। सकल कामना हीन ले नाम जपने नहीं है, हाँ ऐसा अर्थ विद्वान लोग लगाते हैं, पर साधक का अर्थ यहाँ क्या समझना है कि नाम जाप से समस्त कामना पूर्त हो जाता है। इसीलिए सकल कामना हीन जे राम भक्ति रसलीन, राम भक्ति में जो रसलीन हो जाता है वो समस्त कामनाओं के तृप्त हो जाता है, उसको कोई भी कामना शेष नहीं रहता। उसके बाद जब नाभि से उसके नाम चलती है ना, तो वहां पर गोस्वामी जी ने कहा नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहो विचार सुजन मन माई। कली द्वापर सत्य तैरता ये चारों युग में अलग अलग था स्थिति। देखिए सत्य युग में लोग तैरते थे, द्वापर में भी तैरते थे, त्रेता में भी तैरते थे, कलयुग में या तो गोपत युग तरही गाय के पाद चिन्ह में जितने पानी होगा उसको नागने में आपको कितना भार होगा, या तो इतना ही नहीं। बोले नाम लेत भव सुंदु सिखाई, नाम लेते ही भव सागर शेष ही नहीं रहता है और सब सुख जाता है। इसीलिए ये बात आपको स्मरण करना है, नाम साधन में पहले आपकी रुचि होना चाहिए तब राम नाम आपको कृपा करेगा। इसीलिए मैं ये सब बातें कह रहा हूं आपको। तो नाम काम तरु काल कराले कल्प तरु है, आपको किसी चीज की कोई चीज की कमी नहीं होगा। राम नाम नर केसरी कनक सीप कलिकाल, अरे महाराज जैसे जापक जन प्रहलाद हो जाते हैं, जैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को रक्षा किए हैं ना, ऐसे ही अथवा श्रावण भादो मास में बरसात धान के लिए जिस प्रकार से होता है नाम उसी प्रकार से बरसता है। आपको कहीं कुछ भी करना नहीं है, बस आपका जिह्वा हंस नहीं बन जाएगा, मन हंस बन जाएगा। जासु तुम्हारा मानस विमल हंसिनी जीवा जासु मुक्ता हल गुन गन चुनई राम बसवी तासु, आपका ऐसा स्थिति उत्पन्न हो जाएगा ये नाम भक्ति साधना के द्वारा, और किसी से ऐसा नहीं हो सकता है। ये तब होगा जब आपको ये दिव्य कृपा शक्ति आपके ऊपर विराजमान होकर आई है। अब आप लोग ऐसा करें, थोड़ा मैं आज आपका सबका संस्कार परीक्षण करता हूं। पहले इसमें क्या किया जाता है, संस्कार को परीक्षण करना पड़ता है, हाँ संस्कार परीक्षण करके तब ये आपको नाम कृपा इसके अंदर होगी। नाम के द्वारा जो ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है वो शाश्वत नित्य होता है, वो कभी विफल नहीं होता है। तो ये साधना लेने के लिए अब आपको मैं दो चार महत्वपूर्ण विषय समझाता हूं। वैसे तो आपको ये साधना जिस समय श्री गुरु महाराज जी के चरण में मैं प्रार्थना करूंगा उसी समय आपको प्राप्त हो जाएगा और उसकी लक्षण आपके ऊपर आ जाएगा। परंतु यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ठाकुर जी कृपा करके हमें मनुष्य शरीर एक बार देते हैं और जब कृपा करते हैं तो एक बार भक्ति देने वाले साधु से मिला देते हैं। ये भक्ति बड़ा स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सतसंगन पाव ही प्राणी। योग से जप से तप से तीर्थ से व्रत से ध्यान से साधना से यज्ञ से अनुष्ठान से ये भक्ति नहीं मिलती,
भक्ति किसी के आलम्बन से नहीं मिलता है।

भक्ति स्वतंत्र है, परंतु रघुनाथ जी कहते हैं भक्ति कब मिलती है, जब संत कृपा होता है। संत कैसे मिलते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता, सतसंगति संसृति कर अंता। बिना संत के नाम की सत्संगी आपको नहीं मिलेगा, उसके बिना भवसागर अंत नहीं हो सकता। तो कौन सी पुण्य आपको हो तो संत मिलेंगे, तो पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन बचन मन कर्म बचन विप्रपद पूजा। देखिए आज आप यहाँ सौभाग्यशाली होके बैठे इतने बड़े गुजरात प्रांत में, और उसमें भी ये इतना बड़ा हलवल तहसील में है ना, और उसमें भी कंजरी जनपद बड़ाई है, उसके अंदर में केवल आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि आपने इस मठ में इन सदगुरुओं की सेवा किया था, उस पुण्य प्रताप से आप आज इतना यहाँ पर हैं। एक ही पुण्य से, अन्य पुण्य नहीं। कन्यादान का पुण्य, स्वर्णदान का पुण्य, गौदान की पुण्य, भूमिदान का पुण्य, ये सारे पुण्य के द्वारा केवल स्वर्ग मिलते हैं, संत नहीं मिलते। संत मिलने के लिए, गुरु मिलने के लिए संतों की चरण की सेवा किया हुआ हो, उसी पुण्य से संत मिलते हैं। इसीलिए मन कर्म वचन से जिन्होंने गौ ब्राह्मण संत का सेवा किया है, उसी पुण्य से संत मिलते हैं। तब सानुकूल तेई पर मुनि देवा, जो तजी कपट कर ही दीज सेवा, जसले कपट त्याग कर अपने गुरु चरण का सेवा करते हैं, या तो उसको। और हम लोग देखिए यहाँ शिव यज्ञ हो रहा है, राम जी ने कहा और एक गुप्त मत कहूं सबई कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। या तो शिव कृपा असीम हो तो आपको भक्ति मिलेगा। और यहाँ ये कहा है, देखिए मैं कोई मनगढ़ंत साधना नहीं दे रहा हूं, सत्य भगवान गोस्वामी जी सीधा सीधा इस साधना को बारे में कहते हैं, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। ये साधना प्राप्त करने में कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आप भगवान के कहकर उन पर विश्वास करो। हाँ, भगवान के कहकर भगवान पर विश्वास नहीं करते तो दुखी होके भगवान कहते हैं मोर दास काहि नर आशा। हाँ, मेरे नाम लेते हो थोड़ा बहुत और फिर अन्य आशा करके वहां वहां वहां भटकते हो, तो फिर क्या विश्वास तुम्हारे प्रति, करे तो कहो कहा विश्वास है। तो अब क्या गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं यहाँ पर, बहुत कहो का कथा बढ़ाई, आओ अब साधना करते हैं। हाँ, तो इसके लिए कुछ नियम हमने बताया आपको, क्या क्या नियम पालन करना है सुनिए। सबसे पहले अब आज मैं शक्ति का संचार देखूंगा, आज शक्ति संचार नहीं होगा, संस्कार देखेंगे। संस्कार देखते ही आपको क्रिया भी हो सकता है, अनुभूति आ सकता है, क्योंकि यहां से मैं गुरु कृपा शक्ति फेंकूंगा और बहुत सारों को पता लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा, पर वो शक्तिपात नहीं है। संस्कार पहले विचार करके, यहाँ बैठे हुए जितने भी जीवात्माएं हैं, किसकी संस्कार कैसी और किसमें कितनी शक्ति संचार करनी है, ये अगर नहीं जानेंगे तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, तो पहले इसको जानना पड़ता है। तो आज मैं सबको संस्कार, पूर्व जन्म के पाप ताप श्राप भोग जोग क्या क्या है, इस सबको तुरंत अभी कंप्यूटर डाटा में डाल के कहलाऊंगा, कौन कौन वायरस कहाँ कहाँ बैठा है। उसके बाद कौन से वायरस को कौन से एंटीवायरस से डिलीट करना है, वो प्रोग्राम फिट करूंगा, समझे। आज प्रोग्राम फिट होगा, पर शर्त वही लोग अभी यहां बैठना जो कल परसों तीन दिन लगातार बैठ सकते हैं, पहली शर्त अनिवार्य है, बीच में छोड़ना नहीं है ये तीन दिन, कल परसों परसों। अच्छा, एक और शर्त, वही लोग बैठे जो 24 घंटा में एक घंटा आप अपने लिए निकालने की तैयार हो, नहीं तो फोगट में मैं क्यों अपनी शक्ति को बेकार बर्बाद करूं। जो बात इतना हमने आपको कहा है उस अनुभव में तो मुझे पहुंचाना है ना आपको। देखिए, उस गुरु को पाप लगता है, उस माँ को पाप लगेगा जो बच्चा जन्मा कर बाहर रोड में छोड़ देती है,
उसी प्रकार से उस गुरु को भी नरक में जाना पड़ेगा दीक्षा देके जो बीच में छोड़ देता है। समझे कि नहीं? दीक्षा देने के बाद जिस प्रकार से माता शिशु को जब तक अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकता है, जब तक उसमें सूझबूझ नहीं आती है, तब तक माता उसको गोद में लेके लालन पालन करती है। और वही बालक, जिस बालक को माँ एक सेकंड छाती से चिपकाए रखती, नहीं छोड़ती थी, वही माँ वर्षों वर्ष अमेरिका भी भेज देती है, कनाडा भी भेज देती है, यूरोप भी भेज देती है, छोड़ देती है, फिर चिंता नहीं करती है। उसी प्रकार से गुरुजनों को साधना शिष्यों को देने के बाद जब तक साधना उसमें परिपक्व रूप से प्रतिष्ठित न हो जाए, तब तक ख्याल रखना पड़ता है। और जो भगवान की यह कृपा लेना चाहने वाले जिज्ञासु जन हैं, उनको अपने गुरु कृपा के ऊपर काम करने की समय देना पड़ेगा। उसके लिए न तो आपको हमें धन देना है, न मेरे पीछे पीछे वहां नेपाल में आना। आओ तो स्वागत है, हाँ आओ तो स्वागत है, निमंत्रण तो है ही, हाँ। पर आप जहां हो, जैसे हो, सुबह हो, शाम को हो, दिन में हो, रात्रि में हो, किसी भी समय आपने प्रपंच से एक घंटा समय निकालना आपको पड़ेगा। कौन कौन निकालेंगे, हाथ उठाइए तो, एक घंटे के समय, हाँ थोड़ा उठाए रखिए, मैं देखूं जरा। अपने लिए है ये, मेरे लिए नहीं है, धन खर्चा नहीं होगा, कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, डरो मत। हाँ तो लगभग दो चार के अलावा सबने हाथ उठा लिया, धन्यवाद। एक घंटे सिर्फ, तो वो भी कब तक, ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 300 घंटा। कितना कितना? सिर्फ 300 घंटा, दिन को एक घंटा, ज्यादा भी नहीं। और ज्यादा कर सकते तो छूट है, एक काल, द्विकाल व त्रिकाल, हाँ एक काल हो, द्विकाल हो, तीन काल हो, आप स्वतंत्र होकर सकते हो। और एक घंटे में भी केवल 48 मिनट ही आपको कृपा लेने के लिए बैठना है, और दैनिक बैठना है, शक्ति को अपने अंदर काम करने की अवसर देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये शर्त है। अब बाकी आप क्या खाते हो, क्या करते हो, ये पचड़ा में मुझे पढ़ना ही नहीं, वो मेरे रघुनाथ जानते हैं, आपको जिस जिस से बचाना हो अपने आप बचा लेते हैं, समझे कि नहीं? ये कृपा ऐसा अद्भुत है, आप मात्र मात्र आप 3 महीना एक दिन भी नागा किए बिना एक घंटा का समय देते जाओ, संभव हो सके तो जानकीनाथ के सामने, नहीं तो जहां हो वहीं, जो आसपास में, इतना विनती मैं आपको करूंगा। देखिए आपके सानिध्य में इतनी बड़ी सिद्ध पीठ है, आपके सानिध्य में इतनी बड़ी सिद्ध पीठ है, शास्त्रों में कहा है घर में बैठकर भजन करने पर जो पुण्य मिलता है उसके 10 गुना तुलसी के पास में, उसके 10 गुना यज्ञशाला में, उससे भी 10 गुना गौशाला में, उससे भी 10 गुना तीर्थ में, उससे भी 10 गुना नदी में, उससे 10 गुना पहाड़ के चोटी में, उससे 10 गुना ज्यादा धाम में, और सबसे ज्यादा कहाँ, जहां गुरुदेव भगवान विराजते हैं, जहां शालिग्राम जी विराजते हैं, वहां अनंत गुना फल मिलता है। तो आपके ये गुरुधाम यहाँ पर विराजमान है, तो सब धामों का धाम है, यहाँ साक्षात अर्चावतार स्वरूप भगवान शालिग्राम जी विराजमान है, यहाँ जानकी दास जी महाराज जी से लेकर अब तक कई पीढ़ी दर पीढ़ी श्री महात्मा जनों ने यहाँ दिव्य साधना करके ये क्षेत्र परम पवित्र जागृत मोक्ष दायिनी हो रखा है, और साथ में जल की सरोवर है, इसीलिए ये नारायणी क्षेत्र है। तो आप आसपास के लोगों को जितना हो सके सुबह शाम दोपहर, ये आपका आश्रम है, आके 5 मिनट झाड़ू वाड़ू लगा लो, थोड़ा सा सर सफाई करके बैठ जाओ हनुमान जी के राम जी के सामने, हाँ कम से कम आपको बहुत कम एक घड़ी यानी 24 मिनट बैठना है, ज्यादा से ज्यादा 2 घड़ी यानी 48 मिनट, उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं बैठना है एक बार में। और फिर दोबारा आपको समय बैठना है तो 1 घंटे का गैप रखिए, तब तक कीर्तन भजन कीजिए और सेवा कीजिए, फिर बैठिए, पर लगातार सिर्फ 48 मिनट मैक्सिमम, और कम में 1 घड़ी, 1 घड़ी अनिवार्य चाहिए। बच्चों के लिए सिर्फ 15 मिनट, बच्चों के लिए केवल
15 मिनट पर्याप्त है। ये किसी के लिए भी है, इसमें उमेर लिंग का कोई भेद नहीं है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से जब मैं एक मुद्रा बताऊंगा, दो क्रिया बताऊंगा कल, वो क्रिया इसलिए बताऊंगा आपकी 72,000 नाड़ी जम है, आप योग के अन्य क्रिया कर नहीं सकते हैं। मेरे पास चेतन क्रिया है, एक को महासुदर्शन क्रिया कहा जाता है, दूसरे को त्रिवस्त्रिका। ये लगभग लगभग 5-7 मिनट लगता है इसको करने में, परंतु 5 किलोमीटर दौड़ लगाने से व 84 आसन करने से जो आपको लाभ मिलेगा वो 4 मिनट की क्रिया से आपको मिलेगा। और 3 प्रकार के त्रिवस्त्रिका कराते हैं, तो 5-7 मिनट की ये विधि कोई भी करेगा, एकदम सहज है, किसी के लिए भी, उसमें कोई परिश्रम नहीं है। इतना करने के बाद 72,000 नाड़ी में तत्काल आपकी प्राणवायु प्रवेश कर जाता है, नाड़ी शोधन हो जाता है, उसके बाद आप चुपचाप आधा घंटा बैठ सकते हो, उससे ज्यादा तो फिर आपकी दम नहीं है, हाँ नींद आ जाएगी और उठपटांग हो जाएगा, तो आराम से आधा घंटा बैठ सकते हो और बस वो 48 मिनट, ये सबको मिलाकर है, ये एक घंटा जो है ना, और अंतिम में उड़ते समय प्राण को अपने जगह मिलाना होता है, 4 क्रिया उसमें होता है, सहज क्रिया इसको करना होता है, और बस कृपा लेने बैठना है, बस शर्त इतना ही है, और लगातार छोड़ना, आज के बाद एक दिन भी छोड़ना नहीं है, और जैसे आप करते जाओगे रोज हमें पता लगता जाएगा, और हो सकता है आपके लिए मैं 3 महीने के बाद तुरंत यहां आना पड़े या 6 महीने के बाद आना पड़े। साल में एक बार ये शिवरात्रि के समय में आने का तो हमने मन में संकल्प बना दिया, गुरु महाराज जी आज्ञा देंगे तो साल में एक बार यहाँ आएंगे, और इधर से मैं सीताराम बापू से निवेदन करता हूँ, वहां लंका विजय हनुमान जी भी पहुंच जाएंगे। ऐसे ऐसे संतों के आश्रम आश्रम में जाई जाई के ठाकुर जी को जगाना है। तो आप सबकी और गुरु महाराज की कृपा हुई तो साल में एक बार तो मैं अभी नक्की कर देता हूं, और आवश्यकता पर, क्योंकि इसमें मेरा आवश्यकता तुरंत पड़ेगा, मुझे पता है, हाँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है, हाँ भजन किया और कुछ न हो, वो योग काय की योग है जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव न हो, वो कृपा काय की कृपा न हो जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव न हो। इसमें तो महाराज प्रत्यक्ष गड़गड़ा के कृपा आगे बढ़ती है, हाँ साधना का अर्थ केवल बाहरी अभ्यास कठोर नियम व दीर्घ तपस्या मात्र नहीं है, साधना सच्चा साधना तो अंतकरण को रूपांतरण है, वो आपको दो प्रकार से सुनो। यहाँ पर एक और बात है, कई लोगों को कुछ भी नहीं होगा, ये मुझे पता है किस किस को क्रिया होगा किस किस को नहीं होगा, शक्ति ने हमें पहले बता चुका है, सिर्फ हम प्रचार नहीं बनाते हैं, वो आज्ञा नहीं है हम लोगों को। पहले ही पता है, तो कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होगा, पर इसका मतलब मेरे ऊपर शक्तिपात नहीं हुआ ऐसा अर्थ नहीं लगेगा। आपने घड़ी देखा है ना, घड़ी में 3 कांटे होते हैं, एक फर फर फर फर फर चलता है आवाज के साथ में, एक घड़ी घड़ी चलता है, बाल काला नहीं होगा, मन चंचल होगा, मत करो, बाबा जी करते करते उनकी सफेद हो गया, नाखून जुदाना कुलक्षण माना जाता है, नहीं करना चाहिए, प्रयास करके देख लिए 10 वर्षों से नहीं हुआ काला, हमारे भी सफेद हो गए, हमने खुद किया। तो अच्छा क्या कह रहा था मैं, नाखून के पीछे चला गया, हाँ घड़ी। तो दूसरा है मिनट का कांटा, वो मिनट मिनट में उछलता है तो घड़ी घड़ी दिखेगा, और घंटा वाला बिल्कुल भी नहीं चलता, एक ही बार घंटे में चलता है पर समय सूचना वो दे देता है। ऐसे इस साधना में आप 3 प्रकार के साधक यहां हो, एक कपूर जैसे, एक कोयला जैसे, एक केले के खंभे जैसे। कपूर को जैसे आग दिखाएंगे तुरंत जलेगा, कोयला को फूंक मारेंगे तो जल जाएगा, केले के खंभे को भट्टी में ले जाके डालो तो भी चू चू करता रहेगा। पर ये भी चिंता मत करो, ये थोड़ा हंसी मजाक के लिए कह रहा हूं,
कुछ भी क्रिया न होने पर भी आपके जीवन में रूपांतरण हो जाएगा। ये शक्तिपात किसी को बुद्धि में होता है, किसी को शरीर में होता है, किसी को मन में होता है। जिसकी शरीर में क्रियाओं की आवश्यकता है उसको हठयोग की क्रियाएं होने लगता है। सब प्रकार के आसन प्राणायाम, 84 लाख प्रकार के आसन प्राणायाम है महाराज, उनमें से न जाने कौन कौन सी आसन प्राणायाम आपकी शरीर के लिए आवश्यकता होगी वो होगा वो 48 मिनट के भीतर। हाँ, फिर बाद में बंद हो जाएगा, फिर चिंता मत करना कहीं ऐसे ही चलता रहे कि मैं कहीं बावरा तो नहीं हो गया या कोई देवी तो नहीं चढ़ गई मेरे ऊपर, या देवी देवता कोई नहीं चढ़ते, ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो अपने आप आपको कौन सी आसन कठिन से कठिन आसन ऑटोमेटिक होगा, मजा आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा, शरीर के पीड़ा हरण होगा। जिसको हठयोग की आवश्यकता होगी उसे शारीरिक क्रिया होगा, जिसको लय योग का आवश्यकता होगा उसको सूक्ष्म क्रियाएं होंगे, देवी देवताएं सब दिखने लगेंगे आपको, सारे अपने पितृ आदि सब सामने नजर आएंगे। परंतु ध्यान रखिएगा, कोई कोई तो आके बोलते हैं, आके शिवजी भी बोलने लग जाते हैं, सब बोलने लग जाते हैं, पर वहां आपको कुछ भी नहीं सुनना है। हाँ, चुपचाप साक्षी भाव से देखते रहना है। इस साधना में मन को कंट्रोल नहीं करना है, मन को स्वतंत्र छोड़ना है, शरीर को स्वतंत्र रखना है। कोई क्रिया शरीर में होता है तो होने देना है, रोता है शरीर तो रोने देना, हंसता है तो हंसने देना, उड़ता है तो उठने देना, नाचता है तो नाचने देना, ये सब होता है। जब नवरस शरीर में चलता है ना, हास्य रस चलता है, तो साधक ठुमका लगा के नाचने लगता है, वहां गीत उत कुछ नहीं, वो मस्ती में नाच रहा है। श्री कृष्ण जी की दशा रामायण में आप पढ़िए, क्वचित रुदंती क्वचित हसंती, कभी वो रोने लगते हैं कभी वो हंसने लगते हैं, क्रीडंती क्वचित, कभी दौड़ के उस कोने में कभी दौड़ के इस कोने में, बेपथु हो जाते हैं साधक जब भक्ति उद्बोधित होने लगता है। मत्तो भवति उन्मत्तो भवति, पागल के तरह बालूल फैला के हैं भी करने लग जाते हैं, उन्मत्तो भवति। पर ये सब भक्ति के लक्षण है, डरना नहीं, कोई अर्थ लगाना नहीं, ये लिखा है शास्त्रों में। हाँ, मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नैन बहनीरा, रोमांचित हो जाएगा आपका, रो खड़े हो जाएगा, शरीर में कंपन होने लगेगा गड़गड़ा के। राम नाम की तेज इतना तेजी से भीतर चलता है ना जब पका, तो पूरे शरीर कांपने लगता है। किसी को एक हाथ कांपेगा, किसी का दोनों पैर कांपेगा, किसी का पूरा शरीर कांपेगा, किसी का एक अंग कांपेगा, स्पंदन शरीर में जहां जहां वायु दौड़ेगा वहां फर फर फर फर फर होने लगेगा, किसी का नाभि में धक्का लगेगा, किसी के पीठ में रीढ़ के हड्डी से ऊपर कुछ चढ़ रहा है ऐसा महसूस होगा, ये सब होगा। पर ये सब क्या है, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग की क्रियाएं है। घबराना नहीं है, देखते रहना है साक्षी भाव से कि गुरु महाराज आपके साथ क्या लीला करते हैं, गुरु कृपा शक्ति आपके साथ में क्या आनंद का खेल खेलते हैं। देखो संतों अगम का अपारा, तो अद्भुत खेल शुरू हो जाता है। चकमक मनसा तूला, आगे जो ज्ञान गुदड़ी में रामानंदचार्य जी ने वर्णन किया है इसका महाराज, बहुत सुंदर। हाँ, ओहम सोहम, क्या ओहम सोहम चक्र विस्तार कहाँ गया, ओहम सोहम तत्व विचार, हाँ बंक नाल में किया विस्तारा। हाँ, तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। ये हमारी वैष्णवी विद्या, ये कोई तांत्रिक नहीं है, ये विशुद्ध योग विद्या है। हाँ, राम नाम की, यहाँ किसी प्रकार के कोई अन्य चीज नहीं है।

0: रेडियो समृद्ध नेपाल 92 मेगाहर्ज।
1: रेडियो समृद्ध नेपाल स्टुडियो टाइम चेक अहिले दिउँसोको ठीक 2 बजेको साथ।

0: हेलो,
1: अँ भन त।
0: कहाँ छौ? आज भेट्ने भने होइन?
2: किन भेट्ने? म आज बिजी छु।
0: तिमी मलाई माया त गर्दैनौ?
1: हे, जहिले मन मुटु माया के हो के फोन राख।

0: कमिंग अप नेक्स्ट
1: कार्यक्रम समृद्ध शुभ बिहानी रेडियो समृद्ध नेपाल स्टुडियो टाइम चेक अहिले बिहानको ठीक 5 बजेको साथ